अस्पदि जब कार्य कठिन दिष्टिता पापुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन सुमाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चेहना जापत तब हरक सोग कहो किस व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम अपन खेलिया वर्ती जा नानक करण हार न दूजा।

जय अपने आप आप पतिया र तै कौन कतै कौन सुनने हर बो बेअंति उचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जय आप रचियो परपंच कार तेह गुण मैं किनो बिस्तार पापुन तै पई कहावत।

अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरह गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग यगन सागर तरहो। हर धन के पर लेहो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उदारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल है रतन। सुनत कमावत होत उदार, आप तरै लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। सारण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन।

सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निबही खेप हमारी। प्रभ के उस्तत करहौ संत मीत सावधान एकाग्र चीत। सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहोत निदान। सार विशाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्बत है सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान। चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल तिस जान कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने।

इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तिना सुवै सा हर त्याई मेरे जियाड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल हुई है नित त्याई हर पुरख निरंजना रहा जय हर सिमरन पया तह पाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भवजल तरना जय हर सिमरन भया तह पाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर भवजल तरना सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसेय गुरु के जन्म मरण दुख ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀ ਹੈ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾਵੇ ਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु लै पाछै बावै, एक वस्त कारण बेघोट गवावै। एक पी ना दे दस पी हिरले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाहीं चारा, ताको की जय साध नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रा मीठा, सर्ब सूगता हु मन बूठा। जिस जाने अपना हुक्म मनाया, सर्ब तोक नानक तिन पाया। गनत साहु अपनी देरास, खात पीत बरतै अनदो लास। अपनिया मान कछ बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रुपस करे। अपनी प्रति ते आप ही खोवै, बौरस का विश्वास न होवै। जिसकी बस्त दिसे आगै राकै, प्रभ की आगै मानै माथै। उसते चौकन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत, सार पर होवत जान नेत। बिरकी छाया स्यों रंग लावै, ओ बिन सै ओ मन पछतावै। ज्योति सहसो चालन हार, लपट रहे हो तै अंध अंधार। बिटाऊ स्यो ज्यों लावै नेह, दा को हाथ न आवै केह। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटंब सुबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राजोपन तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असवस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेग हस्ता। मिथ्या द्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस उपर करत गुमान। हस्तरे भगत साध की शरण, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरहै। मिथ्या नेत्र पेखत पर तरे रूपाद, मिथ्या रसना भोजनान स्वाद। मिथ्या चरण पर बेकार को धावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। मिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देहे नानक हर हर नाम ले। व्यर्थी सागत की यार जा, साज बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन तिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कर बन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। राहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्म मैं मरै। जिसकै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पहने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपै मानै। आपै आप आप करतन बेरा, किसै दूर जनावत किसै बजावत नेरा। उपाव सियानप सकल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत। जिस पावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंत रहे आसमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जाप नानक हरि। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए हमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी। जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को राख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधत तन लावें, तिसको सरम सिमरत परम गत पावें। जय प्रसाद बसें सुख मंदर, तिसहै त्याई सदा माने अंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा तिहाई ध्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावें, तिसहै त्या कत अवर लुभावें। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पैर ताका जस गा बीजै। जय प्रसाद तुझ सब को माने, मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगाह मान पावै, नानक बल से ती कर जावै हैं। जय प्रसाद यारो कंचन देही, लिबला बो तिस राम सनेही।
जय परसा तेरा ओला रहत मन सुख पावे है हर हर जस कहत। जय परसा तेरे सकल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जय प्रसाद तुझको ना पहुँचै मन साध सा सिमरो प्रभ ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद या पूखन पैरी जय मन तिस सिमरत क्यों आरस की जय। जय प्रसाद असभ हस्त्या सवारी मन तिस प्रभ को कब हूना बिसारी।

गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत्संग जी, हुण सुवास ग्रास सिमरन ब्यास क्लास का समा हो गया है। आओ सिमरन शुरू करन तो पहला एक बार आपां सुवास ग्रास विधि नूं समझ लईए। जदों सुवास अंदर जाए वाहे दी वाज दे के सुनना है, जदों सुवास बाहर आए गुरु दी वाज दे के सुनना है। अपने नेत्रां नूं बंद रखना है, अपनी रसना नूं बोलन ते ला देना है ते सरवणा नूं सुन ते ला देना है। महाराज समझाउंदे हन, धुन मह ध्यान, ध्यान मह जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। सो सारिआं दे चरणां विच बेनती है, आपां सारिआं ने इक लय दे विच सारिआं ने बोल के अभ्यास करना है जी। करो कृपा जी। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह।

तित कर गावो सोहिला सिवरो सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहिला, हों वारी जित सोहिलै सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन देखैगा देवनहार, त्रिदाने कीमत ना पवै तिस दाते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, दिहो सज्जन आसीसड़ियाँ ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। घर घर इहो पाहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरियै नानक से देह आवन। रागासा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर को वेस अनेक। बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोय रहाओ। वे सोए जसया घड़ियाँ पहरा, थिति वारी माहो हुआ। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वा जंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो। सहस मूर्त ननाएक तोही, सहस पद बिमन ननेक पद गंध बिन। सहस तव गंध इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए। तिस दै चानन सब मह चानन होए, गुरु साखी जोत प्रगट होए। जोत सुभावै सो आरती।

0: ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए।
1: पंच प्रधान पंचे पावे धर्गे मान,
0: पंचे सोहे दर्रा जान, पंचा कागुर एक ध्यान।
1: कह करे विचार करते कह करने ना इस्मार,
0: पौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या दिन सूत। धरती होर पर होर होर तिस्ते भार तले कवन जोर। इह लिखा लिख जाने कोए, लिखा लिखिया कीता होए। कीता पसाओ एको कुआओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। संक ग्रंथ मुख वेद पाठ, संक जोग मन रहे उदास। असंख सूरम भक सार, असंक मौल विलाय तार। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे, असंख निंदक सिर करह भार। नानक नीच कह विचार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिता कीता तीता नाओ, विंडा वै नाही को थाओ। जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। मोत पलीती कपड़ होए, देसा बून लिये उतोए। उन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख लै जाहो। तीर्थ तप दया दत्त दान, जिको पावे तिलका मान। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। वेल न पाईआ पंडती जे होवै लेख पुराण। तितवार न जोगी जाने रुतमा होना कोई। किव कर आखा किव साला ही, क्यों वरनी किव जाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई, की

0: रूपे
1: नमो शाह शाहं नमो पूप पूपे
0: नमो दान दाने नमो मन मने
1: नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं गुणाश्री
1: अनुपे अरूपे समस्त कुल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्धि कर्ता
1: अद्वैत अंग अंग वर्धता
0: परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं

0: न परम न पितृ
1: न कर्मम न काये जन्म जाये
0: न चित्रे न मित्रे परे है पवित्र
1: पति से अति से अर्धि से अग्रि से
2: भगवती शांत व प्रसाद कृत।

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहन गणिजै

सेवक थी संतोख जन सचो सत्य आया उन्हीं मंदे पैर न रखे उनकर सुकर धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू मुक्सी सी अगला नित देवे चढ़े सुवाया।

सत्संगियो जंग मंगयानी दी गल है पक्षतान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी बिसरिया दा तारा। जदों दातां मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया। शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया पुत्र वड्डा

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपा तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबां भी है। नहीं बई, तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते वड्डे कमरे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां थले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लवे, साडिया नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनते। ओए गुरसिखा, खुशियां ते तेरे

तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है वी सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिने तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे, दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच